0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: कपाट।
1: दो पंजे दस, दो छक्के बारह,
0: चमक चमक तकदीर का तारा।
1: दो छक्के चौदह, दो छक्के सोलह,
0: मैं हूँ आग और तू है शोला।

मुंडन संस्कार है। मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार हॉन ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

तूने मुझे चोरी से अपना बनाया और फिर हमें रोना सिखाया और हंसना सिखाया। क्या बात है। कामचोर फिल्म से आप सुने किशोर कुमार एंड लता जी से, और ये तो उजाला रेडियो है, आपको तो मालूम ही है ना। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे, मैथ्स लक्षणा पंडित जी।

भीगी भीगी वादियों में खो जाने को दिल कहता है सनम। मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम दिल ही दिल में उजाला रेडियो पर अन्य लता जी के साथ मुकेश जी।

रात को जी, हाय रात को जी, बोले पपीहारा भेद खोले, तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले, तेरा मेरा तेरा जी मैं

चला ब्रासा मिला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया। U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020 409 0807, dus 020 409 0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: Yeah, Ujala Radio. Goedemiddag. Mijn hoe luid mag hier. Hamari staat op dinnen wel, hè? Ha? Hamari staat op dinnen wel, hè? Aatje, shami, doe beter. Tot twee uur. Ujala Radio, kizere, ham je ze, avi, lanen wel, hè, vermaaij. Dul Raja Girish Thakur. Aur Dulhanwani Shivani Ratan ke waaste. In dunno ke vi vaasanskar, aaj badi dhoom-dham ke saath hone wala hai. भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहें। दूल्हे राजा गिरीश ठाकुर, दुल्हन रानी शिवानी रतन, ये विवाह संस्कार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दुल्हा गिरीश और दुल्हन रानी शिवानी एक दूसरे को ये संदेश देना चाहते हैं। On both top for a car, गिरीश और शिवानी दुर्गा माँ को प्रणाम करके माता रानी के कृपा और प्यार हमेशा हमारे साथ रहें। एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ और इसी के साथ ये नामा पेश किया जा रहा है।

आलमेर के रहने वाले हैं दूल्हे राजा गिरीश ठाकुर और आलमेर की रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी दत्तन के विवाह संस्कार आचरण वाले हैं। इस खुशी के मौके पर एक दूसरे के वास्ते गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज होने वाला है और इस खुशी के मौके पर अगला नामा जो आप सुनने जा रहे हैं एक दूसरे के लिए दिल जान से प्यार और मोहब्बत के साथ फरमाइश करें। गिरीश ठाकुर की तरफ से नामस गिरीश ठाकुर फॉर प्यारी प्यारी ब्यूटी क्वीन शिवानी के लिए नाम शिवानी रतन फॉर हैंडसम सा गिरीश के वास्ते पेश किया जा रहा है।

आलमेर के रहने वाले हैं दुल्हन राजा गिरीश ठाकुर और आलमेर के रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। एक दूसरे के लिए दिलोजान से प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश किया। अगला नामा जो आप सुनने को जा रहे हैं सिर्फ प्यार मोहब्बत के बयान आप सुनने को जा रहे हैं। गिरीश ठाकुर एंड शिवानी रतन एक दूसरे के लिए दिलोजान से प्यार मोहब्बत के साथ पेश करें।

आज है शनिचर 11 तारीख जुलाई, वही खुशी का दिन है, बड़ा दिन है दुल्हन राजा गिरेश ठाकुर एंड दुल्हन रानी शिवानी रतन का। इस खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ तमा को फरमाइश किए। नाम दुल्हे राजा गिरेश ठाकुर फॉर ब्यूटी क्वीन शिवानी के लिए एंड नाम दुल्हन रानी शिवानी रतन की तरफ से हैंडसम सा प्यारा सा होने वाला पति देव के लिए एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ पेश करें।

आज शनिचर 11 जुलाई को आलमीर के रहने वाले हैं दूल्हे राजा गिरीश ठाकुर एंड दुल्हन रानी शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाले हैं। एक दूसरे के लिए दिलजान से प्यार और मोहब्बत के साथ नहवा को मांगिए। गिरीश ठाकुर एंड शिवानी रतन, आप दोनों के आज विवाह होने वाले हैं। बहुत ही खुशी का दिन है और इस खुशी उपलक्ष्य पर नाम से गिरीश फॉर शिवानी एंड शिवानी की तरफ से गिरीश के लिए एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार और मोहब्बत के साथ पेश करें।

ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। खुशी के मौके पर गिरीश ठाकुर ने अपनी प्यारी प्यारी होने वाली धर्म पत्नी के लिए एनाम शिवानी रतन अपने प्यारा प्यारा होने वाले पतिदेव के लिए प्यार और मोहब्बत दिल और जान के साथ फरमाइश किए। आज शनिचर 11 तारीख जुलाई है तो अलमीर के रहने वाले दुल्हे राजा गिरीश ठाकुर और अलमीर के रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन के विवाह संस्कार है। इस खुशी के मौके पर गिरीश ठाकुर ने अपने प्यारी प्यारी ब्यूटी क्वीन के लिए एनामस शिवानी रतन फॉर हैंडसम सा गिरीश के लिए फरमाइश करें। सुनिए आप।

अलमीर के रहने वाला गिरीश ठाकुर एंड अलमीर के रहने वाली दुल्हन रानी शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज ये विवाह संस्कार बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। शुभ अवसर पर एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे को बधाइयां देते हुए नहमा को फरमाइश के युवा जाना रेडियो यह सुन वाला फरमाइश देना है 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. Gireesh Thakur en Shivani Ratan ki vivaah sanskar aaj sanichar ko hone wale hain khushi ke mauke par. Dulhe Raja Gireesh and Dulhan Rani Shivani ek dusre ke liye pyar mohabbat ke saath dil aur jaan ke saath farmaish kar rahe hain.

Takur और शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं और इस विवाह संस्कार की खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ धामा को फरमाइश किए। आज शनिचर 11 तारीख जुलाई है, खुशी का दिन है क्योंकि आज अलमीर के रहने वाले हैं गिरेश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह है। इस विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ अर्ज करें, सुनिए आप।

ठाकुर और शिवानी रतन की विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर नामस घिरीश ठाकुर और होने वाली ब्यूटी क्वीन धर्म पत्नी शिवानी के लिए नामस शिवानी रतन फॉर हैंडसम सा पतिदेव घिरीश के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश के। घिरीश ठाकुर एंड शिवानी रतन थोड़ी देर के लिए फरमाइश को हम रोक देते हैं। नाउ द कमर्शियल ब्रेक डन हाउ फेडर। आज के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है। आज आप दोनों की विवाह संस्कार होने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि आप दोनों को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और ये भी प्रार्थना है कि आप दोनों जिंदगी भर जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ में रहें।

live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आनवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आनवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

आज से नीचे 11 तारीख जुलाई है, तो आज खुशी का दिन है। गिरीश ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार होने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए दिलोजान से प्यार मोहब्बत के साथ हम आपको फरमाइश के। अगला नाम जो आप सुनने को जा रहे हैं, सुन सजना, गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन एक दूसरे के लिए दिलोजान से प्यार मोहब्बत के साथ नाम आपको फरमाइश के हैं, क्योंकि इन दोनों के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के लिए फरमाइश के हैं।

ठाक हूँ और शिवानी रतन की विवाह संस्कार आज से नीचे 11 तारीख जुलाई को है। खुशी के मौके पर नाम उस घीरेस फॉर शिवानी और नाम शिवानी फॉर घीरेस के लिए ये नहमा दिल और जान प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश किए। गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश करे हैं।

आज है शनिचर 11 तारीख जुलाई साल 2026 में आज विवाह संस्कार हो रहे हैं गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन का। इस खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश किए। गिरीश ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। इस विवाह संस्कार के खुशी के मौके पर अगला नामों को मांग के हैं एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ।

ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं आज 11 तारीख जुलाई को। खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ ना हमको फरमाइश किए। उजाला रेडियो ये है सुन वालों और उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश जारी किया जा रहा है। अलमीर के रहने वाले गिरीश ठाकुर एंड शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं खुशी के मौके पर। अगला नामा जो आप सुनने को जा रहे हैं तुम तो हो एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत दिल और जान के साथ फरमाइश करें हैं।

शनिचर 11 तारीख जुलाई है, आज वही दिन है जिसका इंतजार के गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन वन फंदाख इसलिए विवाह संस्कार इस खुशी के मौके पर प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश किए। गिरीश ठाकुर और शिवानी रतन की विवाह संस्कार आज बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। इस खुशी के मौके पर गिरीश ने शिवानी के लिए नाम शिवानी फॉर गिरीश के लिए प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें तुझे देखा तो

ठाकुर और शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज 11 तारीख जुलाई को होने वाला है। खुशी के मौके पर एक दूसरे के लिए दिल जान से प्यार और मोहब्बत के साथ फरमाइश के आखिरी फरमाइश आज के प्रोग्राम में और गाना कबूल है कुछ कुछ होता है। घीरेश ठाकुर शिवानी रतन के विवाह संस्कार आज है। इस खुशी के मौके पर नामस घीरेश ठाकुर ब्यूटी क्वीन शिवानी के लिए नामस शिवानी फॉर हैंडसम सा घीरेश के लिए प्यार मोहब्बत के साथ पेश करें।

यू आर उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए यहां तक आपने सुने हैं फरमाइश जो कि हमने पेश किए हैं दूल्हे राजा घेरे ठाकुर एंड दुल्हन रानी शिवानी रतन के वास्ते। आप दोनों के विवाह संस्कार आज होने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना किए जा रहे हैं कि जोड़ी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आप दोनों साथ साथ में रहे जिंदगी भर। घेरे ठाकुर एंड शिवानी रतन Nogmaals, van harte gefeliciteerd namens het hele team van Ujala Radio. Ujala Radio के जरिए फरमाइशें सुनने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम यही आशा कर रहे हैं कि जितने से फरमाइश हमने पेश की है आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा। Een hele fijne middag, een fijne avond. आज रात के लिए बधाई।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

नमस्कार, सलाम और सनसनीखेज। मैं हूं अमित जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो। जहां भी हो आप, वट यू कैन डू बिंट, खनीत लेके फायदा एंड खनीत लेके सामने मेट उजाला रेडियो।

क्या पता ले जाएगा कहाँ बेसुबान इश्क ये। बड़ी खूबसूरत सॉन्ग, खूबसूरत गाना, खसोंगदोर बबली हक, बबली हक एंड जवेद अली, जवेद अली आउट द फिल्म बेसुबान इश्क, टाइटल सॉन्ग वाज दैट। टाइम फॉर अ बीट पंजाबी फ्लेवर, सद्दी गली आजा नीति मोहन।

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड जोंदग 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में। Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there.

इशारे तेरे, इशारे तेरे, या बेबी तेरे स्माइल प्राइसलेस, या ये लाख इज अनबेटेलबार, या एन लाख इज सो अ मोय इट्स फॉर द मेंसे, एंड आई हाउ फॉर ऑफ मेंसे दी मी आन इट लाखन कुनन माके, या ऑफ मोमेंटे दैट आई दैट हेलेमाल नीट विल, दैट आई हेलेमाल नीट विल लाखन, मा दैट से मी टोख आन इट लाखन कुनन माके, एंड यू होर्ट वेल इज फॉन यू वर्ड मेट द डग लेकर, मा यू हैव ओक मेंसे दी मेट द लाख लेकर वर्डन. He, als ze niet lachen, dan kijken ze boos. Dan zien ze er chagrijnig uit. Maar zodra ze beginnen te lachen, ja, dan stralen ze. Ja, je zult het vast wel herkennen, toch?

सितारों का सितारा उजाला रेडियो का पैगाम आपके दिलों की धड़कन और आंखों का तारा मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में आप सुनिए किरण केदार की आवाज।

0: अपने, बस हमारे साथ बने रहो, उजाला रेडियो के साथ आप बने रहे और हम आपको सुना रहे हैं मिक्स मार्क सॉन्ग्स। हमारा फोन का नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन पर 024-09-0807।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: हम बोल ली तो मिक्स मैक्स सॉन्ग्स, इस बार संजय योद्धा की आवाज। ये मेरा प्रेम पत्र तुम पढ़कर नाराज ना होना।

अजी सुनती हो, सुनती हो कि तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। जाने जाने ए जाने मन, इतना मेहरबानी काहे के। संजय योधा की आवाज बाय द वन एंड ओनली द रॉकिंग उजाला रेडियो। तू जाने है तो

नदीम खान की आवाज आप सुने हैं प्यार के लिए चार पल कम तो नहीं थे कभी हम नहीं थे कभी तुम नहीं थे बस उजाला रेडियो को आप सुनते ही रहना

मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में इस बार आप सुनिए नदीम खान की आवाज में आंखों आंखों में हो गए हम तुम दीवाने बाय द रॉकिंग उजाला रेडियो।

बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन आपने नदीम खान की आवाज में सुने हैं ओरिजिनल महल नामक फिल्म से। कितनी हंसी है, तन्हाइयां है, तन्हाइयों में रुसवाइयां है। मिक्स मैक्स सॉन्ग्स जो हम आपको सुना रहे हैं, और इस बार आप एक और ऑर्केस्ट्रा सिलेक्शन सुनिए, और गायक है शहीद वाहिद हुसैन। रोशन तुम ही से दुनिया, रौनक तुम ही जहां की, ऐ फूलों में पलने वाली रानी हो गुल सीता की। शहीद वाहिद हुसैन के पास स्टेशन है उजाला रेडियो।

0: शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में आपने सुने हैं रोशन तुम ही से दुनिया, रौनक तुम ही जहां की। हमारा फोन का नंबर है 02-0908-07, या तो आप हमें ईमेल द्वारा भी खबर भेज सकते हैं और पता है info@ujala.net। मिक्स मैक्स ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग्स बाय द रॉकिंग यू आर। तुमसे थोड़ा सा मैं दूर,
1: थोड़ा सा मैं दूर हूँ, थोड़ा सा करीब हूँ, और मेरे और पास
0: हम बोली ला ना, हमारे पास आओ
1: मेरी।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

नैन तुम्हारे मजेदार और इसलिए हमको तुमसे है प्यार, क्योंकि तेरे नैनों ने जादू किया है मुझ पर। फिल्म जंगली का गीत मुकेश जी एंड आशा जी से आप सुने। उजाला रेडियो है ये।

दिन हो या रात हो, बस हर एक पल में तेरा मेरा साथ रहे। फिल्म सौदागर से लता जी की आवाज में इस सुंदर गीत को आप सुने, और लता जी के साथ अब एक बार मुकेश जी हिस्सा ले रहा है।

चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए और चाहे सब रूठे, बस तू रूठे ना, लागी तुम से लगन साथी छूटे ना। मुकेश जी एंड लता जी की आवाजों में आप सुने फिल्म सारंगा का गीत उजाला रेडियो पर।

और प्यार का बंधन, जन्मों का बंधन अब टूटे ना। लता जी एंड मोहम्मद रफ़ी से आप गीत सुने। फिल्म का नाम शोला और शबनम, और ये है उजाला रेडियो।

और मैंने तुझे कभी कुछ कहा था, जो भी कहा वही तो किया। किशोर कुमार एंड आशा जी से आप सुने, फिल्म का नाम ये वादा रहा। और मुकेश जी एक बहुत ही पुराना गीत के साथ हिस्सा अब प्रोग्राम में लेंगे।

यहां रात किसी की रोते कटे या चैन से सोते सोते कटे, तकदीर में कैसी रात मेरी, ना रोते कटे और ना सोते कटे। बहुत पुराना गीत मुकेश जी की आवाज में आप सुने हैं, और जिन लोगों को मुकेश के गीतों पसंद है तो आपको मालूम भी होगा कौन फिल्म का गीत ये है। 1961 निखंतिन एनन जस्तर के फिल्म और नाम जय भवानी, जय भवानी।

एक मंजिल और राही दो, फिर प्यार ना कैसे हो। लता जी के साथ मुकेश जी से गीत आप सुने, फिल्म संजोग से निकाला हुआ।

कोई चीर के देखे दिल मेरा तो देखेंगे कि तेरा ही नाम लिखा रखा है मेरे दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, बस तेरा ही नाम और तेरा ही दर्द छुपा रखा है। सुरेश वरकर एंड आशा जी से गीत आप सुने, फिल्म का नाम ईमानदार। एक और पुराना गीत मुकेश एक बार फिर, मैं सुमन कल्याणपुर, उजाला रेडियो है तो तू जाने तो

तुमसे मिलकर, हाँ तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। अगर तुमसे मिलकर और भी कुछ याद आता है तो कोई बात नहीं, अगर मुझसे मिलकर तुम्हें कोई और याद आता होगा तो बड़ी मुश्किल बात है यार। लता जी के साथ शबीर कुमार की आवाज भी आप सुने। फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं, प्यार झुकता नहीं। तो चलिए, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जारी है, आप ही के लिए तो बना रहा हूं, बस तुम्हारे लिए। और सुनने के लिए शुक्रिया।

कुमार सानू और अलका याग्निक, इन दोनों की आवाजों में गीत को आप सुने फिल्म वजूद से निकाला हुआ। और ये उजाला रेडियो है प्रोग्राम को जो आप सुन रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप देखें हमेशा उजाला.nl।

Aurichon de Chupa Badal में अलका याग्निक एंड उदित नारायण से गीत को आप सुने, फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम। और अगला गीत जो आप सुनेंगे तो पेश आई है फिल्म पुकार में।

और हाँ, किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे। सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल से आप सुने, और फिल्म पुकार का गीत उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों। अब एक बार फिर वही डियो अलका जी एंड कुमार सानू।

ये सिलसिला है प्यार का, फिल्म का नाम भी ये सिलसिला है प्यार का, एंड ये उजाला रेडियो है। E proberiai administrazi fan Ujala Radio te bereiken, doe dat dan van maandag tot en met zaterdag, van 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag. En het telefoonnummer is 020 4090807. Ujala Radio.

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान से आप सुने फिल्म अरमान का गीत, और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, तार का नंबर है 020-409-8070 एन ईमेल एड्रेस info@ustartojala.nl।

गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूँ, सुरों का बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप सिलेक्शन सुने हैं। मैं हूँ शहीद गुलजार, यह है उजाला रेडियो। हरे को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मिले जुले संगीत आपकी खिदमत में पेश की जा रहे हैं उजाला रेडियो के जरिए, आप मनोरंजन प्राप्त कीजिए।

0: हमने तुमको याद किया, बहुत याद किया,
1: तुमको याद किया।
0: अरे जाने मन पल दिन महीने कई साल हो गए, हम तो तेरे प्यार में बेहाल हो गए। अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज।

सिलेक्शन आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक आप फोन कर सकते हैं 020-409-0807 पर। रॉकिंग सेंसेशन यू आर उजाला रेडियो के जरिए आदमी मुसाफिर है आता है जाता है

0: आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। सुर का बादशाह मोहम्मद रफी और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज।
1: उजाला रेडियो, रेडियो तू जाने है तोख तोख तोख।
0: सन 1981 का फिल्म जमाने को दिखाना है से आइए मिलकर सुनते हैं बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

0: दिल का करार,
1: दिल का करार किया हुआ।
0: तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी।
1: The Melody Queen of India, आशा भोसले और सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज।
0: पूछो ना यार क्या हुआ,
1: पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। उजाला रेडियो का पैगाम आप सभी श्रोताओं के मध्य में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना। माई हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, My love encloses a plot of roses, and when shall be then our next meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting.

'cause love, you know, that time is fleeting. Film Julika Selection, My Heart is Beating. You are Ujala Radio का पैगाम आप सभी श्रोताओं के मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज़ है। स्टूडियो से कुछ मिले जुले संगीत आपके मनोरंजन के वास्ते पेश किए जा रहे हैं। Stay tuned! फोन का नंबर है हर एक अमर काज के वास्ते 024-09-08-07। द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी की आवाज में कुछ शेर सुनाता हूं मैं।

गोल्डन ओल्डी सेलेक्शन आपके मध्य में प्रस्तुत की गई है। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। रॉकिंग सेंसेशन यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। हर एक को शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है। आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना।

मैं तेरी हूँ जानम, क्या बात है, तू मेरा जिया। फिल्म का नाम खून भरी मांग सिलेक्शन आप सुने हैं। मैं हूँ शहीद गुलजार। हम आपसे फिर मिलते हैं। उजाला रेडियो को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।